ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। अब आज की बाकी खबरें समाज फरमाइए। रूस की गैर मुल्की इंटेलिजेंस

0: रहे। उन्होंने मजीद कहा कि रेडक्लिफ के साथ मुलाकात सिर्फ एक बाकायदा वर्किंग मीटिंग थी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट पॉलिटिको ने इस मामले से वाकिफ ज़राए का हवाला देते हुए खबर दी है कि CIA के डायरेक्टर ने मॉस्को में रूसी हुक्काम को खबरदार किया है कि वो अमरीका के नेटो इतिहादियों, ख़ास तौर पर बाल्टिक रियासतों एस्टोनिया, लेटविया और लिथुआनिया के साथ तनाज़ा ना बढ़ाएं। टोक्यो में अराजी इंतहाई महंगी होने के सबब कंटेनर में डाटा मराकज़ का क़याम AI यानी मसनू जहानत के बढ़ते हुए इस्तेमाल को जगह फराहम करने का एक हल है। NTT दोकोमो बिजनेस और टेपको पावर ग्रिड ने जुमेरात को प्री फैब्रिकेटेड डाटा मरकज की नकाब कुशाई की। वो टोक्यो के ओता वार्ड में पहला यूनिट नसब करने और इसे अगले साल के मौसम खजा में ऑपरेशनल करने का इरादा रखते हैं। ये 6 मीटर लंबा स्ट्रक्चर सर्वर और उसके आला कारकर्दगी के हामिल लेकिन गर्मी पैदा करने वाले सेमीकंडक्टर्स को ठंडा रखने के माया कूलिंग सिस्टम से लैस है। NTT दोकोमो बिजनेस के मात्सू बायाशी ओसामू ने कहा, एक नए सेंटर को फाल करने में कम से कम 5 साल या यहां तक के 8 से 10 साल भी लग जाएंगे, जिसमें एलिवेटर्स भी शामिल हैं, लेकिन ये मुद्दत AI की तलब की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए कंटेनर में कायम किए जाने वाले डेटा सेंटर के फवायद जल्द ही आश्कार हो जाएंगे। इन कंपनियों का कहना है कि टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इलाके में डेटा सेंटरों के लिए ज़मीन का हुसूल मुश्किल तर होता जा रहा है, लेकिन अब भी कंटेनर के अंदर ऐसे मराकज़ कायम करने की गुंजाइश मौजूद है। टोक्यो टॉय शो का आगाज़ जुमेरात को हो गया है, जिसमें हज़ारों मसनूआत नुमाइश के लिए रखी गई हैं और इनमें से बहुत से खिलौने समाजी रुझानात की अकासी करते हैं। ये इवेंट जापान के सबसे बड़े तजारती शोज़ में से एक है। मुंतजमीन का कहना है कि तकरीबन 35,000 अशिया की नुमाइश के लिए 180 से ज़्यादा कंपनियाँ और तंजीमें शिरकत कर रही हैं। एक खिलौना सरमायाकारी पर मबनी बोर्ड गेम है। खिलाड़ी हिस्स सोना या क्रिप्टो करेंसी के बराबर कार्ड जीतने के लिए गोटी चलाते हैं। खिलाड़ी कीमत में इजाफे या मुआशी बदहाली जैसे वाकयात से भरे खानों के गिर्द घूमते हैं। एक मुकर्रा मालियत के असासे जमा करने वाला खिलाड़ी फातह करार पाता है। एक और खिलौने में एक सुपरमार्केट में सेल्फ चेक आउट, कैश के बगैर मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अदायगी और दीगर उमूर की नकाली की गई है। इवेंट के एक ओहदेदार का कहना है कि बच्चों तक में समाजी रुझानात की अकासी करने वाले वैल्यू एडेड खिलौने मकबूल हैं। जापान टॉय एसोसिएशन के फुजी दाइसुके ने कहा, आजकल बच्चे ऐसी चीज़ों से खेलना पसंद करते हैं जो वो अपने वालिदैन को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं और वो सोशल मीडिया पर मकबूल हो रहे हैं। ऐसे खिलौने खूब फरोख्त हो रहे हैं। ये नुमाइश कारोबारी इदारों के लिए जुमे तक और लोगों के लिए हफ्ते और इतवार को खुली रहेगी।
1: सामीन, इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से आज की अहम खबरें ख़त्म हुई और मज़ीद खबरों और दीगर मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट पर तशरीफ़ लाइए।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 28 अगस्त शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। नेपाल और चीन के सीमावर्ती क्षेत्र में बुधवार को अचानक आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 472 हो गई है, जबकि 1400 से अधिक लोग लापता हैं। मध्यवर्ती नेपाल का रसुआ जिला और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का शिगात्से शहर इस बाढ़ की चपेट में आया है। रॉयटर्स ने क्षेत्र की उपग्रह से ली गई तस्वीरें दिखाई हैं, जिनमें नुकसान की भयावहता का पता चलता है। 2024 की एक तस्वीर में नदी के किनारे वाहन, एक सीमा चौकी और अन्य इमारतें दिखाई दे रही हैं, जबकि बृहस्पतिवार को ली गई तस्वीरों में नदी और आसपास का इलाका कीचड़ से ढका हुआ है और कोई भी इमारत दिखाई नहीं दे रही है। नेपाल के अधिकारियों ने अब तक 469 मौतों की पुष्टि की है, जबकि 910 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं चीन के सरकारी मीडिया ने सीमा के अपने हिस्से में 3 लोगों के मारे जाने और 558 के लापता होने की खबर दी है। उसका यह भी कहना है कि मृदा स्खलन के कारण चीनी क्षेत्र में एक झील बन गई है, जिसके चलते और आपदाओं का खतरा बढ़ गया है। जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर कुमामोतो में आए भीषण भूकंप को शुक्रवार को 1 महीना पूरा हो गया। अधिकारी निवासियों से और भी तगड़े भूकंपों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह कर रहे हैं। 28 जुलाई के भूकंप की तीव्रता उकी शहर और हिकावा नगर में जापान के 0 से 7 के भूकंप मापी पैमाने पर अधिकतम 7 दर्ज की गई थी। इस भूकंप से बड़े पैमाने पर भारी नुकसान हुआ। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार क्षेत्र में भूकंपों की आवृत्ति में मामूली कमी आई है, लेकिन ये अब भी सामान्य से अधिक है। एजेंसी ने निवासियों से अगले 1 महीने या उससे अधिक समय तक करीब 5 निम्न या उससे अधिक तीव्रता के भूकंपों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है। सरकार की भूकंप अनुसंधान समिति का कहना है कि ये भीषण भूकंप हिनागु नामक भ्रंश रेखा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हलचल के कारण आया। भूकंप वैज्ञानिकों ने लोगों को तेज झटकों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि इस भ्रंश रेखा क्षेत्र के कुछ हिस्से अब तक नहीं हिले हैं। जापान सरकार भूकंप से क्षतिग्रस्त कुमामोतो प्रीफेक्चर के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए वित्त वर्ष 2026 के बजट में आवंटित आपात निधि का उपयोग करने जा रही है। शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में सरकार ने राहत उपायों के लिए 147.8 अरब येन यानी लगभग 93 करोड़ डॉलर का उपयोग करने की योजना को मंजूरी दी। लगभग 48 करोड़ डॉलर का उपयोग मुख्य रूप से अस्थायी आवास बनाने और नष्ट व क्षतिग्रस्त मकानों को हटाने और ध्वस्त करने के लिए किया जाएगा। निवासियों की आजीविका बहाल करने के लिए 24 करोड़ डॉलर आवंटित किए गए हैं। इसमें से कुछ राशि छोटी और मझौली कंपनियों को दी जाएगी, ताकि उनके उपकरणों और सुविधाओं को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। सरकार कुमामोतो सहित क्यूशू क्षेत्र के पर्यटन में जान फूंकना चाहती है, जिसके लिए उक्त राशि में से पर्यटकों को ठहरने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। नदियों और सड़कों से जुड़े मरम्मत कार्यों के लिए लगभग 21 करोड़ डॉलर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस राशि का कुछ भाग क्षतिग्रस्त कुओं के सर्वेक्षण और मरम्मत तथा अन्य उद्देश्यों पर खर्च किया जाएगा।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। रूस की विदेशी खुफिया सेवा एसवीआर के निदेशक ने स्वीकारा है कि हाल ही में उन्होंने मॉस्को में अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी सीआईए के निदेशक से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने इसे कुछ भी असामान्य नहीं बताया। एसवीआर निदेशक सरगेई नारिशकिन ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों से उन खबरों के बारे में बात की जिनमें कहा गया था कि सीआईए निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने मॉस्को का दौरा किया है। नारिशकिन ने कहा कि खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के बीच प्रत्यक्ष या ऑनलाइन बैठकें उनके काम का हिस्सा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रैटक्लिफ के साथ बैठक महज एक नियमित कार्यकारी बैठक थी। मामले से परिचित सूत्रों का हवाला देते हुए अमरीकी समाचार वेबसाइट पॉलिटिको ने बताया कि सीआईए निदेशक ने मॉस्को में रूसी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे अमेरिका के नाटो सहयोगियों, विशेष रूप से एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे बाल्टिक देशों के साथ तनाव न बढ़ाएं। टोक्यो में जमीन हासिल करना एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में एआई के बढ़ते उपयोग को देखते हुए कंटेनर आधारित डाटा सेंटर एक समाधान हो सकते हैं। एनटीटी डोकोमो बिजनेस और टेपको पावर ग्रिड ने बृहस्पतिवार को एक प्री फैब्रिकेटेड डाटा सेंटर का अनावरण किया। वे टोक्यो के ओता वार्ड में इसकी पहली इकाई स्थापित करने और इसे अगले साल शरद में चालू करने की योजना बना रहे हैं। 6 मीटर लंबा ये कंटेनर एक तरल शीतलन प्रणाली से लैस है जो उसके सर्वर और उच्च कुशलता वाले अर्धचालकों को ठंडा रख सकेगी। ये अर्धचालक अत्यधिक गर्मी पैदा करते हैं। एनटीटी डोकोमो बिजनेस के मात्सुबायाशी ओसामू ने कहा, एक नया प्रतिष्ठान जिसमें लिफ्ट भी लगी हो उसे चालू करने में कम से कम 5 साल या 8 से 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन ये समय सारिणी एआई की बढ़ती मांग के अनुरूप नहीं है, इसलिए इस कंटेनर आधारित डाटा सेंटर के फायदे जल्द ही सबके सामने होंगे। कंपनियों का कहना है कि टोक्यो महानगर क्षेत्र में डाटा सेंटरों के लिए भूमि हासिल करना अधिक कठिन होता जा रहा है, लेकिन कंटेनर आधारित सुविधाएं स्थापित करने की गुंजाइश है। टोक्यो टॉय शो का बृहस्पतिवार को शुभारंभ हुआ जिसमें हजारों उत्पाद दिखाए जा रहे हैं और कई खिलौनों में मौजूदा सामाजिक रुझानों की झलक देखी जा सकती है। ये आयोजन जापान के सबसे बड़े व्यापार मेलों में से एक है। आयोजकों का कहना है कि इसमें 180 से अधिक कंपनियों और संगठन लगभग 35,000 उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक उत्पाद निवेश से जुड़ा बोर्ड गेम है। खिलाड़ी शेयर, सोना या क्रिप्टोकरेंसी के कार्ड जीतने के लिए पासा फेंकते हैं। खिलाड़ी आर्थिक मंदी या महंगाई जैसी घटनाओं से भरे खानों पर आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित मात्रा में परिसंपत्ति एकत्र करने वाला खिलाड़ी विजेता होता है। एक अन्य खिलौना सुपरमार्केट की तर्ज पर बना है जिसमें सेल्फ चेकआउट, स्मार्टफोन से कैशलेस भुगतान और अन्य विशेषताएं हैं। आयोजन के एक अधिकारी का कहना है कि सामाजिक रुझानों को दर्शाने वाले मूल्य वर्धित खिलौने बच्चों के बीच भी लोकप्रिय हैं। जापान टॉय एसोसिएशन के फुजी दाइस्के ने कहा, आजकल बच्चे उन चीजों से खेलना पसंद करते हैं जिन्हें वे अपने माता पिता को इस्तेमाल करते देखते हैं और जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही होती हैं। ऐसे खिलौने खूब बिक रहे हैं। ये प्रदर्शनी शुक्रवार तक कंपनियों के लिए और शनिवार व रविवार को आम जनता के लिए खुली है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।